0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Ayo, G-Funk.

के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह, तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: Hear more SBS Chill on the SBS Audio website and app.
1: सरगम बन जाती है संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

0: tu dancing far and style.
1: Slow down, boys.

है सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हो है। हजार रात में वहाँ भी एक रात हो है। आँख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं हुआ, एक पल भी पूरी कायनात हो है। वह एक पल भी पूरी कायनात हो है।

बहुत गौर से सुनिया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी भूत की कहानी, कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी। नानी के पीछे खड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर।

SBS South Asian.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 17 मई 2026 की एक रविवार वाली शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज के SBS Hindi कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर यह कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज का बस एक सवाल भाई, सर्दी, वो जो गुनगुनी वाली सर्दी होती है ना, वो शुरू हो गई है पूरे ऑस्ट्रेलिया में. ऐसे मौसम में कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है, जो आप सबसे आराम से ढलती हुई शामों में सुनना पसंद करते हैं? 04397997 हमारा नंबर है, ज़रूर भेजिए संदेश. तब तक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ आज के कार्यक्रम में संक्षिप्त समाचार. उसके बाद करेंगे सप्ताह भर की बड़ी खबरों पर चर्चा, जिसके बाद SBS फ्लैशबैक के सेक्शन में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी पर बातचीत, जहां पर हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं आपके लिए. इसके बाद रहेगी गीतों की रेलगाड़ी, वही सर्दी के शामों वाली जो गीत आप मुझे बताएंगे उनसे चलाएंगे हम आज की गीतों की रेलगाड़ी. तो बताइए मुझे कि सर्दियों में कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, मौसम आपको कौन से गीतों की याद दिलाता है? 04397997 हमारा नंबर है. जब तक आप भेज रहे हैं संदेश, आइए मैं आपको लिए चलती हूँ संक्षिप्त समाचार की ओर. पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने तस्मानिया स्थित डाउजिंग पॉइंट डेरविंट बैरिक्स का दौरा किया है और घोषणा की है कि इस रक्षा परिसर की जमीन को नए आवास निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. होबार्ट के उत्तर में स्थित इस क्षेत्र को फेडरल सरकार पहले ही रक्षा बल की अतिरिक्त संपत्तियों की बड़ी बिक्री योजना के तहत चिन्हित कर चुकी थी. करीब 31 हेक्टेयर में फैले इस साइट पर 1000 तक नए घर बनाए जाने की योजना है, जिनमें सामाजिक और किफायती आवास भी शामिल होंगे. सरकार का कहना है कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 12 महीनों का समय लगेगा. इस बीच सिडनी में कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने कहा कि विपक्ष की टैक्स नीति अगले 10 वर्षों में लगभग 250 अरब डॉलर का अतिरिक्त कर्ज पैदा कर सकती है. उन्होंने विपक्ष नेता एंगस टेलर के बजट जवाबी भाषण को बजट घाटे का नुस्खा बताते हुए कहा कि इससे ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर कर्ज के ब्याज का बोझ अरबों डॉलर तक बढ़ सकता है. डॉक्टर चामर्स ने कहा कि पिछले सप्ताह एक तरफ लेबर सरकार थी जिसने अलग अलग तरीकों से 5 बार कर कटौती दी, जिससे औसत कर्मचारी को सालाना लगभग 2800 डॉलर की राहत मिल रही है. वहीं दूसरी ओर एंगस टेलर का ऐसा बजट जवाब था जिसकी ना तो फंडिंग स्पष्ट है और ना ही लागत का पूरा हिसाब. उन्होंने आरोप लगाया कि ये योजना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय वन नेशन पार्टी के दबाव को रोकने की कोशिश ज्यादा लगती है. और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने अभी तक सरकार की ईंधन टैक्स राहत योजना को बढ़ाने पर स्पष्ट तौर पर हाँ नहीं कहा है, लेकिन इसे खारिज भी नहीं किया है. विपक्ष फिलहाल इंतजार करने के पक्ष में है, हालांकि उसका कहना है कि महंगाई को संतुलित करने वाले कुछ उपाय शामिल किए बिना वे इस योजना का समर्थन करने को लेकर आशंकित हैं. सरकार की ओर से ईंधन उत्पाद शुल्क में 3 महीने की कटौती अप्रैल की शुरुआत से लागू हुई थी, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 26.3 सेंट की कमी आई थी. वहीं अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों के खिलाफ नस्लवाद, नफरत और हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए चल रही संसदीय जांच में सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेजने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. ये फेडरल संसदीय जांच जॉइंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन अबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर अफेयर्स द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें लेबर पार्टी, गठबंधन दल और स्वतंत्र सांसद शामिल है. अब सुझाव भेजने की नई अंतिम तारीख अगले महीने की शुरुआत तक तय की गई है, जबकि अगस्त तक देश भर में सार्वजनिक सुनवाइयां आयोजित की जाएंगी. NITV न्यूज से बातचीत में अबोरिजिनल लेबर सीनेटर जाना स्ट्यूवर्ट ने कहा कि लोग अपनी बात लंबी चिट्ठियां, दस्तावेजों, कविताओं, कलाकृतियों, कहानियों या अपने किसी ढंग से समिति तक पहुंचा सकते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कांगो के पूर्वी इतुरी प्रांत में फैले नए एबोला प्रकोप में अब तक कम से कम 87 लोगों की मृत्यु की खबर है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने समुदाय में संक्रमण तेजी से फैलने की चेतावनी दी है। बीमारी को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर्मी जांच और संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। इसी बीच समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने इतुरी की राजधानी बुनिया में स्थानीय लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने अपने डर और चिंता व्यक्त किए। एबोला एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो उल्टी, खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से फैल सकती है। ये बीमारी दुर्लभ जरूर है, लेकिन बेहद गंभीर और कई मामलों में जानलेवा साबित होती है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा में जनसभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर निशाना साधते हुए मिस्टर नेफ्यू से जुड़ी 24 संपत्तियों की जांच के संकेत दिए हैं। उन्होंने 2021 चुनाव के बाद हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की बात भी कही। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताया है। वहीं भारत में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने 227 किलो से अधिक कैप्टागन ड्रग जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 182 भारतीय करोड़ रुपए बताई जा रही है। कैप्टागन एक खतरनाक नशीला स्टिम्युलेंट पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर किया जाता है। दिल्ली और गुजरात में हुई कार्यवाही में एक सीरियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। इसी के साथ 17 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यही समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए रुक करते हैं ज्यूरी ड्यूटी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने का। भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या है ज्यूरी ड्यूटी, आप कब बुलाए जा सकते हैं, क्या कुछ आपको करना होता है, क्या आपको ज्यूरी ड्यूटी पर जाना जरूरी है, ये सारी बातें समझेंगे ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में। बेहद रोचक अंश है, आइए मिलकर के सुनते हैं। हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो मतदाता सूची में शामिल हैं, उसे ज्यूरी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। इस व्यवस्था को ज्यूरी ड्यूटी कहा जाता है। लेकिन अगर आपको ज्यूरी सदस्य के रूप में बुलाया जाए तो इसका मतलब क्या है, ज्यूरी की भूमिका क्या है, भाई आज के ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और भी जानकारी। ज्यूरी ऑस्ट्रेलिया कानूनी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में ये एक नागरिक कर्तव्य है कि जब आपको बुलाया जाए तो आप ज्यूरी में सेवा दें, और ऐसा ना करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ज्यूरी सेवा समुदाय के सदस्यों को न्याय की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देती है। डॉक्टर एंड्रू बर्क मैक्वेरी लॉ स्कूल में वरिष्ठ लेक्चरर और ज्यूरिस डॉक्टर निदेशक हैं। वे समझाते हैं।
3: Juries are a way of involving the community in the legal process. And in that sense, juries are part of Australian democracy. So that when somebody is charged with a serious crime, the people who get to decide if that person is guilty or not is not a lawyer or a judge, but 12 ordinary members of the community who make up the jury.
2: जैकी होरन मोनाश यूनिवर्सिटी के लॉ संकाय में सहायक प्रोफेसर है। वे समझाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यूरी केवल कुछ प्रकार के मुकदमों के लिए ही बुलाई जाती है।
4: The juries in Australia are only in cases that are very serious. So we have them for murder trials, armed robbery trials, and trials of sexual assault. The less serious criminal cases like theft are just heard without a jury with a judge.
2: Mark Nolan, Charles Sturt University के Center for Law and Justice के निदेशक हैं। वे बताते हैं कि उम्मीदवारों के नाम ऑस्ट्रेलियाई मतदाता सूची से यादृच्छिक रूप से यानी रैंडम तरीके से चुने जाते हैं।
5: Usually you would receive a letter that says you have been summoned for jury duty. Go to this website and fill in a survey and tell us about yourself and tell us whether you think you can sit on a trial and be a juror. Sometimes it might ask you questions about your English language proficiency. Sometimes it might ask you questions about your work, whether you know someone who is involved in the case or not.
2: एक जूरी में आमतौर पर 12 सदस्य होते हैं, लेकिन कभी कभी इससे कम भी हो सकते हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में जूरी के सदस्यों की संख्या हमेशा एक जैसी नहीं होती। डॉक्टर होरन समझाते हैं।
4: It depends on the different parts of Australia where you're in, but usually it's 12. In some places in Australia, they actually have juries for civil cases like they do in America. So there might be a civil case of somebody suffering a major injury, perhaps in a hospital, and that they can sue the hospital or the doctors. And that case in some places like Victoria, you can actually have a jury of 6 people who hear that case.
2: कुछ परिस्थितियों में किसी उम्मीदवार को छूट दी जा सकती है, जैसे कि छोटे बच्चों के साथ अकेले माता पिता, या यदि कोई व्यक्ति छोटा व्यवसाय चलाते हैं और उसकी अनुपस्थिति से व्यवसाय में असर पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर बर्क आगे समझाते हैं।
3: The Jury Act exempts some categories of people from jury duty. For example, lawyers. I'm exempt from being a juror because I'm a lawyer. Also, people with very important jobs. If you are an emergency doctor. Or a nurse during a pandemic, for example, you don't have to be a juror.
2: इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को सुनने में कठिनाई है, या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, या वे बुजुर्गों की देखभाल करते हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें भी छूट प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर बर्क बताते हैं कि यदि किसी जूरी सदस्य को लगता है कि वे मुकदमे की पूरी अवधि तक नहीं रुक पाएंगे, तो उन्हें इसे मुकदमे के शुरू होने से पहले घोषित करना आवश्यक है।
3: At the very beginning, before the trial starts, the judge or the crown prosecutor will give a brief description to the jurors to say that this is what the charge is and this is what the sort of evidence that you're going to hear. So of course, many trials might involve upsetting evidence and photographs and so on. So they describe that and they'll say, if any of you think that you are unable to do this, unable to be impartial about the evidence, then say so now and you can be excused.
2: मुकदमा शुरू होते ही जूरी को भी साक्षियों को सुनना आवश्यक होता है. डॉक्टर बर्क समझाते हैं.
3: So the jury must be there for all the evidence. So all the witnesses giving evidence, they see all of the photographs, any video, DNA, any of that kind of evidence, but they're out of the courtroom when there are arguments about what the law is, and then when those arguments are settled, they come back in and the judge will explain to the jury what law they must apply to decide guilt or not guilty.
2: जूरी सदस्यों का चयन किया जाता है तो उन्हें आमतौर पर ये निर्देश दिए जाते हैं कि वे मामले के बारे में किसी से बात ना करें और ना ही ऑनलाइन जानकारी खोजें। जूरी सदस्य आमतौर पर उन मामलों में सेवा करते हैं जो 7 से 12 दिनों तक चलते हैं। हालांकि अधिक जटिल मामले जैसे आतंकवाद के आरोप वाले में कई महीने या 1 साल से अधिक तक का समय लग सकता है। जूरी सदस्यों से अक्सर पहले उनकी उपलब्धता के बारे में पूछ लिया जाता है, विशेष रूप से यदि उन्हें एक लंबे मुकदमे पर सेवा के लिए बुलाया जा रहा हो। डॉक्टर हॉर्न समझाते हैं.
4: And once all the witnesses have been heard and all the evidence is given into court, if there's documents, the jury are then given those documents and they're given the transcript of the court case and they're put into a jury deliberation room. And they're asked to deliberate, and it can take some time, several hours, for the 12 people to talk through all the issues to make sure that they're satisfied that either the defendant is guilty beyond reasonable doubt, or if they're unsure, that the finding would be not guilty.
2: वे बताते हैं कि जूरी को सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचना आवश्यक होता है, या फिर कुछ मामलों में 11-1 का निर्णय भी स्वीकार किया जा सकता है.
4: Whilst the serious cases like murder in most parts of Australia require all 12 jurors to agree, there are some times where only 11 out of the 12 jurors need to agree for a verdict to be accepted by the judge from the jury. So for example, it might be a sexual assault case, and 11 of the jurors perhaps agree that the defendant is guilty, and one of the jurors does not. That will be sufficient for the court to accept the jury's verdict to be guilty of the offences charged beyond reasonable doubt.
2: और अगर जूरी किसी निर्णय पर ना पहुंच पाए, तो क्या हो? डॉक्टर बर्क ये भी समझाते हैं.
3: If the jury cannot agree, 12-0 or 11-1. That is what's known as a hung jury. And that means that there must be a new trial, start all over again with a new trial and different jury. Or at that point, the prosecution can say, well, we give up. We're not going to win, so we give up. The prosecution would usually give up after maybe 2 or 3 goes.
2: एक जूरी सदस्य को प्रत्येक दिन के जूरी ड्यूटी के लिए भुगतान मिलता है. डॉक्टर होर्न समझाते हैं.
4: It is a requirement of everybody's boss that they paid the equivalent of what they'd normally be paid for if they were going to work, but they actually go into jury service. So each state and territory gives you some money each day that you attend jury service. But if that's not the same as how much you normally earn, then your boss still has to cover that.
6: डॉक्टर होरन कहते हैं कि हालांकि शुरुआत में अधिकांश लोग जूरी में सेवा करने के बारे में आशंकित होते हैं, लेकिन जो लोग इसे कर चुके हैं वे इस अनुभव को महत्वपूर्ण मानते हैं।
4: It's not very often in your life that you get to do somebody else's job for a week or two, but in this case, citizens are able to be a judge and see how the justice system works, and it's a very fascinating once in a lifetime experience that after you've done it, you really appreciate it, and research has shown that people are happy to do it again once they've done it once.
6: अपने नए जीवन में ऑस्ट्रेलिया में बसने के बारे में अधिक मूल्यवान जानकारी और सुझावों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब या फॉलो करें। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की संच को SBS न्यूज से श्रियारा पद्जानो और SBS हिंदी से वृशाली जैन ने प्रस्तुत किया है आपके लिए। हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी। और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त हो गया है पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार आपके लिए लेकर के आऊंगी सप्ताह भर की खबरों का एक न्यूज रैप। तो बने रहिए SBS हिंदी पर, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं भाई सर्दी के मौसम में आपको कौन से गीत सबसे ज्यादा याद आते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है, भेजिए मुझे संदेश ताकि उन्ही गीतों की बना सकूं मैं आज की रेलगाड़ी। 04397997667 नंबर है। वृशाली के साथ बने ये SBS हिंदी पर, बस यूं गई और यूं आए, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा SBS हिंदी को।
7: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
8: SBS News इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
9: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
10: हाय, आई एम जैनिस पीटरसन फ्रॉम SBS वर्ल्ड न्यूज एंड आई एम हियर टू हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
11: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
6: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृशाली को और मेरे पास आपके संदेश आने शुरू हो गए हैं। मुझे कुमार जी का संदेश आया जो कह रहे हैं, हाय वृशाली बहन जी, द सॉन्ग दैट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस इज तुम ही मेरे मंदिर। मैं आपके लिए ये गीत अभी लेकर के आती हूँ और इसी के साथ आज मैंने सवाल किया था कि भाई ये जो मौसम है ना, ये नई नई सर्दियों वाला, ऐसे में आपको कौन से गीत पसंद आते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है, भेजिए मुझे संदेश। तब तक आइए सुनते हैं सप्ताह भर की खबरें ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया भर से, भारत से, खेल जगत से इस न्यूज रैप में।
12: हाय,
2: प्रस्तुत है 16 मई 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप वैशाली जैन के साथ। विपक्ष के जवाबी बजट भाषण से प्रवासी समुदायों में चिंता, ACCC बनाम कोल्ड मामले में फेडरल अदालत का अहम फैसला, और ऑस्ट्रेलिया करेगा 30 साल बाद अमेरिका कप में वापसी। और अब सप्ताह भर की खबरें विस्तार से। शरणार्थी और प्रवासी समर्थन संगठनों ने विपक्ष के बजट जवाबी भाषण की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें प्रवासियों और शरणार्थियों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। विपक्ष नेता एंगस टेलर ने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में प्रवासन में सबसे बड़ी कटौतियों में से एक को लागू करने का वादा किया है, हालांकि सटीक आंकड़ा चुनाव के करीब बताया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन सरकार के अंतर्गत केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ही कल्याणकारी भुगतान और NDIS यानी नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसी ही और 17 सेवाओं की भी बात की गई है। सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वायलेट रोमिलियोटिस ने कहा कि इससे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे स्थायी निवासियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों ने भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और प्रवासन में कटौती की योजना की आलोचना की है। नेशनल्स नेता मैट कैनवन ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय छात्र व्यवस्था को धोखा बताया है, जबकि विश्वविद्यालय क्षेत्र का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। कोषाध्यक्ष चामर्स ने 12 मई को अपना 5वां बजट पेश किया था, जिसे उन्होंने संयमित खर्च और सावधानी पूर्ण लिए गए फैसलों पर आधारित योजना बताया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक विकास धीमा पड़ रहा है और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। डॉक्टर चामर्स के अनुसार ये बजट वैश्विक तेल संकट के दौर में लोगों को राहत देने और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है जो अधिक लोगों के लिए काम करे। उन्होंने संसद से कहा, भले ही ऑस्ट्रेलिया युद्ध की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ये तो तय कर सकती है कि स्थिति का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। इस बीच फेडरल सरकार का कहना है कि मध्य पूर्व युद्ध शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में घरेलू ईंधन भंडार अब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सरकार के अनुसार अगले एक महीने में डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन और कच्चे तेल समेत लगभग 3.8 अरब लीटर ईंधन की आपूर्ति तय की गई है। ऊर्जा मंत्री क्रिस बावन का कहना है कि डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन के बढ़े हुए भंडार सरकार और निजी क्षेत्र के बीच करीबी सहयोग का परिणाम है। वहीं कोल्स ने ग्राहकों को बेहतर कीमतें देने की अपनी प्रतिबद्धता का बचाव किया है, जबकि फेडरल कोर्ट ने पाया कि सुपरमार्केट ने जानबूझकर ग्राहकों को गुमराह किया था। अदालत ने माना कि डाउन इन स्टोर प्रमोशन के तहत किराना उत्पादों पर दिखाए गए कई डिस्काउंट वास्तव में नकली थे। उपभोक्ता निगरानी संस्था ACCC का आरोप था कि कोल्स पहले कुछ उत्पादों की कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ाता था, फिर उन्हें थोड़ी कम कीमत पर स्पेशल ऑफर बताकर प्रचारित करता था, जबकि वे कीमतें पहले की मूल कीमत से भी अधिक होती थी। न्यायमूर्ति माइकल ओब्रायन ने मामले में जांचे गए 14 में से 13 प्रमोशंस को वास्तविक छूट नहीं माना। जुर्माने पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा, लेकिन कोल्स को सैकड़ों मिलियन डॉलर तक का दंड भरना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला ACCC और वुलवर्थ्स के बीच में भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी की सैकड़ों संस्थाओं ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों में बदलाव की एंटी सरकार की योजना की आलोचना की है। नॉर्दर्न टेरिटरी सरकार ने एक नया सार्वभौमिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत ये तय करते समय कि किसी बच्चे को देखभाल में रखा जाए या नहीं, सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा होगी, चाहे उसकी सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस कदम की अबोरिजिनल संगठनों ने तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे अबोरिजिनल प्लेसमेंट प्रिंसिपल कमजोर हो जाएगा, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को परिवारों से अलग करना अंतिम विकल्प हो और परिवार से पुनर्मिलन जल्द से जल्द कराया जाए। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा में इजराइल के एक हवाई हमले में हमास के सैन्य प्रमुख इजलदीन अल हदाद की मृत्यु हो गई है। अक्टूबर में अमेरिका समर्थित युद्ध विराम शुरू होने के बाद से वे हमास के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे जिनकी मृत्यु हुई। हमास ने पुष्टि की है कि इस हमले में उनकी पत्नी और 19 वर्षीय बेटी की भी मृत्यु हुई। तीनों का संयुक्त अंतिम संस्कार शनिवार को गाजा सिटी में आयोजित किया गया। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार शुक्रवार को हुए अलग अलग इजरायली हमलों में 7 अन्य फिलिस्तीनियों की भी मृत्यु हुई, जिनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक युद्ध विराम शुरू होने के बाद से अब तक इजरायली हमलों में लगभग 850 फिलिस्तीनी लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
6: दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान के साथ शांति स्थापित कराने में मदद की पेशकश की है। दोनों नेताओं की बीजिंग में बातचीत हुई, जो पिछले 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चाइना यात्रा मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खुला देखना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि चाइना बोइंग के 200 विमान खरीदने की योजना बना रहा है, हालांकि अब तक कोई बड़ा औपचारिक समझौता घोषित नहीं किया गया है। और अब खबरें भारत से। भारत में इस सप्ताह भीषण गर्मी, शिक्षा संकट, बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और आर्थिक फैसले सुर्खियों में रहे। उत्तर और मध्य भारत में प्री मॉनसून हीटवेव ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किए। कई शहरों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। भीषण गर्मी से देश भर में कम से कम 37 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि बढ़ती बिजली मांग और सूखे जैसी परिस्थितियों ने कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ाया है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अंडमान निकोबार तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंच गया है। शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने से लाखों छात्रों में नाराजगी फैल गई और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। राजनीतिक मोर्चे पर तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय के मुख्यमंत्री पद संभालने और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन की चर्चा पूरे सप्ताह बनी रही। कूटनीति के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की। वहीं भारत यूरोप व्यापार और सेमीकंडक्टर साझेदारी को लेकर भी गतिविधियां तेज रही। वहीं सरकार ने बढ़ते व्यापार घाटे के बीच चांदी के आयात पर सख्ती बढ़ाई और लोगों से सोने की खरीद सीमित रखने की अपील की। इसी बीच अडानी समूह ने अमेरिकी नियामकों से भ्रष्टाचार के एक मामले पर $18 मिलियन के समझौते पर सहमति जताई। और अब अंत में खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया लगभग 30 साल बाद प्रतिष्ठित अमेरिका कप सेलिंग प्रतियोगिता में वापसी की तैयारी कर रहा है। टीम की अगुवाई ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और मशहूर नाविक टॉम स्लिंग भी करेंगे, जबकि सिडनी टू होबार्ट रेस विजेता जॉन विनिंग जूनियर भी इस टीम को समर्थित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक ये प्रतिष्ठित कप केवल एक बार जीता है। 1983 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूयॉर्क यॉट क्लब की 132 वर्षों से चली आ रही जीत की श्रृंखला को खत्म कर इतिहास रचा था। इस सप्ताह के न्यूज रैप में बस इतना ही। और दोस्तों, मेरे पास राजेंद्र जी का संदेश आया है क्रेगी बर्न से, जो कह रहे हैं कि आज की रेलगाड़ी का एक छोटा सा डब्बा अनाड़ी फिल्म से वो सुनना चाहते हैं, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। मैं जरूर लेकर के आऊंगी आपके लिए ये। फिलहाल कुमार जी ने जो गीत मुझसे कहा था मैं वो लेकर के आ रही हूँ।

0: और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपसे मिलती हूँ लेकर के सिटीजनशिप टेस्ट के बारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स। आपसे आज मैंने पूछा है कि सर्दियों के मौसम में कौन सा गीत सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। 04397997 हमारा नंबर है, भेजिए मुझे संदेश। छोटा सा एक ब्रेक, फिर हाजिर होती हूँ लेकर के SBS हिंदी का ये कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं वृशाली को।
1: SBS News इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
2: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
1: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
3: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: Channel 33 par SBS Food, jo parosta hai, sabse swadisht jagah hai. Sthani aur antarashtriya bhojan mein bade naam. SBS Food, Channel 33 par 24 ghante.
2: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
1: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
4: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए 7 दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
0: SBS हिंदी पर आप सुन रहे हैं वृशाली को। और दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सिटीजनशिप टेस्ट दिया होगा, सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी की होगी और कई बार मदद भी ढूंढी होगी। तो आज वो मदद हम लेकर के आ रहे हैं। SBS फ्लैशबैक में हम बात कर रहे हैं नाविटास की टीचर मीना जुनेजा से और हम उनसे इस नागरिकता परीक्षा की तैयारी के गुर सीख रहे हैं। वो आपको कुछ शब्दों के, उनके अभिप्रायों के सारी बातें समझाएंगी और साथ में एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेंगी। तो आइए सुनते हैं इस अंश को और मुझे बताइएगा कि आपके सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी आपको कितनी मुश्किल लगी थी। फिलहाल हम बातचीत इस पर भी कर रहे हैं कि मौसम जो है यानी सर्दियों का, उसमें आपको कौन से गीत पसंद है। तो 04397997767 हमारा नंबर है, आप संदेश भेज के मुझे गीत बता सकते हैं, अपने सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी के अनुभव साझा कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। तो नंबर आपको बता दिया है, अब आइए मीना जुनेजा जी को सुनते हैं।

0: फिर एक नई सुबह है। आप कर्म जोशी के साथ कॉफी का एक कप तैयार करते हैं, अपनी स्टडी टेबल पर पहुंचते हैं और कॉमन बॉन्ड बुकलेट निकालते हैं और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा यानी सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी में जुट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रोताओं, मैं हूँ वृषाली जैन SBS हिंदी से और आपके लिए ला रही हूँ इस नागरिकता परीक्षा को आसान बनाने का एक छोटा सा प्रयास। SBS ऑडियो की लर्न इंग्लिश श्रृंखला से निकली ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप पॉडकास्ट सीरीज में हम चर्चा करेंगे क्या कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने से आपके लिए हो सकती है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप यानी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता की ये परीक्षा आसान। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि इस परीक्षा में आपके सामने क्या क्या पेश आएगा, जैसे कि ये परीक्षा अंग्रेजी में ही होगी, इसमें 20 सवाल होंगे, आपको इसको पार करने के लिए कम से कम 75% अंक लाने होंगे और परीक्षा के दिन आपके पास आपकी एक फोटो आईडी होना आवश्यक होगा। इस भाग में हम अपनी टीचर जी यानी मीना जी से चर्चा करेंगे कि आर कॉमन बॉन्ड बुकलेट के दूसरे भाग में क्या कुछ होगा। तो आइए चलें अपनी क्लास में। भाई, चार भाग में बटे हुई इस परीक्षा के एक भाग की चर्चा तो हम पिछले अंश में कर चुके हैं। इस अंश में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक मान्यताएं, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं यानी भाग दो की, यानी ऑस्ट्रेलियाज बिलीव्स राइट्स एंड लिबर्टीज के बारे में। मीना जी, क्या है ये भाग दो?
1: भाग दो, इसमें हमारी संसद कैसे बनती है और किस तरह संसदीय लोकतंत्र चलाया जाता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, इसके बारे में चर्चा को होती है। कुछ हमारे जिम्मेदारियां हैं ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने के बाद और कुछ हमारे विशेषाधिकार हैं जो हमें इस भाग में समझाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि हमें हर तरह की स्वतंत्रता मिलती है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि दूसरा भाग और चौथा भाग ये दोनों सिमिलर से हैं। इनको ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, ज्यादा ये नहीं सोचें कि इसमें तो ये कहा गया है और दूसरे में ये कहा गया है। इसमें काफी सारे टॉपिक्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं।
0: तो क्या है ये विशेषाधिकार और कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए?
1: विशेषाधिकार के अंदर आता है कि जब भी चुनाव होते हैं हमें मतदान देना जरूरी है और उसमें एक रेफरेंडम भी है जिसमें हमारा मतदान होना जरूरी है। ये आप लोगों के लिए शायद नया शब्द होगा। सो रेफरेंडम का मतलब है कि जब भी यहाँ संविधान में कोई चेंज लाने की कोशिश की जाती है तो जनता से पूछा जाता है कि ये चेंज लाया जाए या नहीं लाया जाए, तो उसके लिए मतदान होता है। तो इसमें यहाँ के नागरिक अपने विचार रख सकते हैं कि ये परिवर्तन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो इसमें ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में वैसे 44 टाइम्स रेफरेंडम हो चुका है, तो ये बहुत ही विशेषाधिकार ही कहा जाएगा इसे, कि आप को ये पावर मिली है ये कहने की कि हमारे संविधान में चेंज किया जाए या नहीं किया जाए।
0: तो मीना जी, जब परीक्षा में ये सवाल पूछा जाएगा रेफरेंडम से संबंधित, तो कैसे पूछा जा सकता है?
1: हाँ, ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट इज रेफरेंडम। तो उसमें जो चॉइसेस दी हैं, जैसे इस बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वोट टू चेंज द गवर्नमेंट, अ वोट टू चेंज द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ वोट टू चेंज द प्राइम मिनिस्टर, What do you think? Which one is correct?
0: हमारी चर्चा के आधार पर तो लगता है the vote to change the Australian Constitution.
1: That's right, Vishali. So, once you understand, it's not difficult.
0: तो एक काम करते हैं, हमारे श्रोताओं को कुछ और ऐसे ही सवालों के साथ छोड़ देते हैं और फिर लौट कर आकर बात करते हैं कि इस भाग की जितनी मुश्किलें हैं उनसे कैसे निपटना है। जैसे पिछले भाग में एंजेलिन पेनरिथ और लूक कैरल ने हमें सवालों का सही उच्चारण भी सिखाया था और कई उदाहरण भी दिए थे, वैसे ही इस भाग में भी वे उदाहरण और उच्चारण दोनों लेकर के आ रहे हैं। आइए सुनते हैं और सीखते हैं।
2: A core value is a value that is of central importance to Australians. Democratic beliefs, rights and liberties are core values.
3: One core value is freedom of speech. So in the test, you could be asked to choose an example of freedom of speech.
2: But first, what is freedom of speech?
3: Freedom of speech means that people have the right to say, write, think and discuss their ideas with others, whatever they are, but always only peacefully without hurting others.
2: Examples include peaceful protests against the government or any person or organisation we disagree with.
3: There's also freedom of association and freedom of religion. That's something you could be asked about too.
2: Secular means not connected with any religion.
3: Is the government of Australia secular?
2: Yes, because the government operates separately from churches and all other religious organisations. To discriminate against someone means to treat them in a way that is different and not right or fair.
3: So, for example, it is against the law to discriminate against someone because of their gender.
2: Yes. There are laws to make sure a person is not treated differently because of their age, gender, race, religion, or disability. Having equality or being equal means being treated like everybody else.
0: तो मीना जी, ये तो हमने सुने कि कुछ जो examples हैं, कुछ और सवाल हैं, या कुछ ऐसे terms जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो मुश्किलें इस भाग को तैयार करने में आती हैं, वे क्या है?
1: ज्यादातर मेरे स्टूडेंट जो फीडबैक देते हैं उनके अकॉर्डिंग कि उनको जो कीवर्ड्स हैं उन्हें याद रखने में मुश्किल होती है। हमारे टीचर्स एक कीवर्ड्स की लंबी सूची बना के स्टूडेंट्स को देते हैं कि उसको याद रखें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वाले शब्द आपको बार बार क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो उससे मिलते जुलते शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पॉडकास्ट है उनकी वेबसाइट पर, उसको बार बार सुने, उससे आपको वो शब्द याद हो जाएंगे और उससे आपको याद रहेगा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगी कि कीवर्ड्स को हमेशा याद रखें, नोट्स बनाएं जब वो आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं और बार बार प्रैक्टिस टेस्ट करें।
0: अभी जाने से पहले हम आपको क्विज के साथ छोड़ करके जाएंगे जो आपका टेस्ट भी लेगी भाग दो के लिए, लेकिन भाग तीन के लिए हम और आप फिर जुड़ेंगे अगले अंश में। एंजेलिन और लूक ने हमारे लिए एक क्विज भी तैयार करी है जहां पर हम कुछ प्रश्नों के साथ साथ जवाब देते हुए चल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है हमारी तैयारी का स्तर। अगर आप जवाब ना भी दे पाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि तैयारी का समय आपके हाथ में है, लेकिन सवालों के जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए सुने लूक और एंजेलिन हमारे लिए क्या सवाल लेकर के आए हैं।
2: Okay, let's practice. First question. Who must the representatives in Parliament answer to? Is it A, other politicians, B, other community and religious leaders, or C, the Australian people? And the answer is C. The representatives in Parliament must answer to the Australian people.
3: What does the rule of law mean? A, all Australians are equal under the law. B, Australia's system of government is a parliamentary democracy. C, all Australian citizens must vote for people to represent them in parliament. The answer is A. All Australians are equal under the law, regardless of their position and status.
2: Okay, on to the next question. What do we call the freedom to join or not join a legal organisation? Is it A, freedom of expression, B, freedom of association, or C, freedom of religion? The answer is B, Freedom of association is the right to join or not to join any legal organisation.
3: What does a fair go mean? A. What someone achieves in life should be a result of their talent, work and effort. B. What someone achieves in life should be a result of their wealth and background. C. Both A and B are correct. The correct answer is A, a fair go. Is our way of saying that what someone achieves in life should be a result of their talents, work and effort.
4: तो ये तो थी भाग दो की मुश्किलें और हमें टीचर जी ने ये बताया था कि किस तरह से इससे निपटना है, लेकिन अब भी दो भाग शेष हैं, यानी भाग तीन, जहां पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में सरकार और कानून की। तब तक के लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है ना मीना जी?
1: बिल्कुल।

तो ये थी सिटीजनशिप टेस्ट की दूसरी कड़ी, और आप ये पूरी सीरीज़ हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में भी सुन सकते हैं। तो आपको वहाँ पर 5 एपिसोड मिलेंगे, एक बोनस एपिसोड भी आपके लिए वहाँ पर। खैर, आगे बढ़ते हैं, ले रही हूँ एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के उस पार लेकर के आऊँगी आपके पसंदीदा गीत, जो कि मेरे पास संदेशों में आ चुके हैं। कुमार जी मुझे बता रहे हैं कि आई गॉट माई सिटीजनशिप इन 1993 अलॉन्ग विद माई मम एंड सिस्टर, दिस वॉज बिफोर द न्यू सिटीजनशिप टेस्ट। सो आई हैव द लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, बस एक छोटा सा अंतराल, फिर हाजिर होती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।

0: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
1: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें
2: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें
3: Learn to speak English. Find videos, podcasts, and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
4: और अब ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ जानकारी SBS On Demand से.
5: नमस्कार मैं हूं वृषाली जैन और आपका स्वागत कर रही हूं SBS ऑन डिमांड की स्पेशल गाइड में जिसमें हम बात कर रहे हैं विविध मजेदार और दिल को छू लेने वाली उन कहानियों की जो इस समय SBS ऑन डिमांड पर आपके लिए हिंदी में स्ट्रीम हो रही हैं चाहे आप किसी खास के साथ एक सुकून भरी शाम की योजना बना रहे हो या अपना मी टाइम एक अच्छी फिल्म के साथ बिताना चाह रहे हो इस महीने की हिंदी भाषा की पेशकशें भावनाएं और चर्चा और दिल के कई रंगों को लेकर आती हैं अगर एक बढ़िया बॉलीवुड ड्रामा देखने का मन रखते हैं तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला स्टारर रेड देख सकते हैं एक ईमानदार सरकारी ऑफिसर खड़ा करता है कुछ मुश्किल सवाल एक बाहुबली नेता के सामने वो भी 70 के दशक में वो और उनकी पूरी टीम एक रेड करके कैसे पूरी व्यवस्था के सामने चुनौती की तरह खड़े हो जाते हैं इसकी एक दिलचस्प पेशकश है
6: रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है
7: गेट खोलो
8: अंदर देख रहे हो
6: बाहर देख रहे हो इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अबीर हैं थरस अवेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड्स डालनी होगी डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा
9: सोल्डिंग बोतल है ताजा ताजा खुला है थोड़ा तो सोर रहेगा
6: 7 साल में 49 बार ट्रांसफर हुआ है जब तक मेरा 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता इस शोर की आदत डाल लीजिए
5: किसी थ्रिलर कथा को देखने का है जहां उत्कृष्ट अभिनय का प्रदर्शन किया गया है तो संतोष एक शानदार विकल्प है इस फिल्म में शाहाना गोस्वामी संतोष नाम की एक ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिनको अपने पुलिस वाले पति की मृत्यु के बाद ये नौकरी मिली थी कैसे उनका ये सफर तय होता है और क्या दिलचस्प केसेस उनके राह में आते हैं ये एक बड़ी कहानी है
10: तेरे जैसी औरतों के लिए सरकार की एक स्कीम है जिसे आश्रित कोटा कहते हैं मतलब के पुलिस वाले की विधवा होने के नाते तुझे रमन की नौकरी मिलेगी
11: कॉन्स्टेबल
10: रमन के जैसे
12: देविका पीपल उम्र 14-15 साल माता पिता राम पीपल रानी पीपल लालीपुर गांव में मजदूरी करते हैं शव कल गांव के कुएं में मिला था
13: कैसे आया यहां पे
14: लाटो ने फेंक दिया
13: ऐसा क्यों करेंगे वो
15: आप लोग भी हर चैनल पे छाए हुए हो बधाई हो हां बहुत बढ़िया डटी रहिए दीवान जी
16: आंखें बंद कर सांस ले सांस छोड़
17: इस देश में दो तरह के छुआछूत हैं एक वो जिसे कोई छूना नहीं चाहता और दूसरा वो जिसे कोई छू नहीं सकता
5: लेकिन थ्रिलर के बजाय अगर आप अपने लिए कुछ मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा जो आपको प्रेरणा दे सके तो रुख कीजिए ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 का सच्ची कहानी पर आधारित बिहार के गणित प्रतिभा आनंद कुमार एक अनोखा IIT प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते हैं जहां पैसों के आधार पर नहीं बल्कि छात्रों के हुनर के आधार पर उनकी किस्मत का फैसला होता है और अगर माहौल को रखना चाहते हैं हल्का

0: का हंसने हंसाने और चटपटी कहानी से भरपूर तो SBS ऑन डिमांड के हिंदी संग्रह में से अभय देओल और परेश रावल की एक हटके फिल्म ओए लकी लकी ओए देख सकते हैं।
1: मेरा नाम लकी है, लकी याद रखना।
2: दिल्ली की पॉश गलियों में सरेआम चोरियां बढ़ती जा रही हैं।
3: कुछ लकी
4: ओए लकी कुछ तो लकी आ तेरी बड्डी है तू करता फाइटिंग किस बात
5: एक दिन तेरा पता पूरी दुनिया पूछेगी।

तो मेरे पास कुमार जी का संदेश आया है जो मुझे बता रहे हैं कि उन्हें भी ये गीत बहुत पसंद है, सब कुछ सीखा हमने जो हमने अभी बजाया था। इसके अलावा मेरे पास एक संदेश आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें बरसात का मौसम है गीत पसंद है। अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दें तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ, क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा है तो मैं नहीं जानती कि संदेश किसका है। और इसी गीत के साथ और ना मैं आपसे अलविदा ले रही हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिए।

0: listen to SBS Chill at sbs.com.au/chill.
1: On SBS South Asian.

0: साउथ एशियन
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बंदा हो तो जिंदा

Papus, papus, papus, papus.

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

क्या खुद को खुदा मानते हो? क्या खुद को खुदा मानते हो? हमें मार तो दिया, पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो?

SBS South Asian.

ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे, हम सांप

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.